0: tu xi bi lang ye chu zu zhe ge dang ga ma sun ju tu se ji zhu ra chu zu ni xia dang ga ma sun ju tu bu jun san ju nian zha chu zu ni ge za ji tu de ren ge du ni chu zu ni ge za ji dang ga ma sun ju tu ling zhong chu zu ni ge za ni tu kan ge lam ji lian zhen chu zu ni ge za ni dang ga ma sun ju tu ren yong ge xin kan chu zu ni ge za ji tu nian gong ge lian zhen jiu zhi bie सबसे शिवजी रिजा मीमर जी छुछु जेजे नी जोजे पर छचिन शोजुर न्यामसु तुछु यी
1: श्यामला जो नमसी ले कुनि दोंवे नमसी गुंदा शुजुन यी माओ बी छुछु नि खिचा गिनो देरन छेमो ना छु छ्यांदो विजु दां श्यांजु जेला छ्याबा छुवा नि छ्याबान जेंवां खावां बेजु छ्यांबे थोवे सचा खसेला खावा छेउं बेजु ngai ji xie ju 宁赤罗卡罗居吉拉纳摩尼恰巴丘王卡王北居萨加卡西拉恰巴镇王卡王北居吉吉诺居当罗居拉萨祥居安日罗居吉拉芝麻蒙库居萨加卡西拉恰巴塔托王卡王北居提米萨加拉芝麻蒙主居索尼尼木宁赤纳丘羌都维居当祥居吉拉恰巴丘王卡王北居萨加卡西拉 恰巴镇万尼恰巴切王卡王北居罗卡罗居拉萨安日切居当罗居吉镇罗居当罗居吉拉芝麻蒙古尼什吉南木居萨加卡西拉恰巴丘王卡王北居提米萨加拉芝麻蒙主居那丘安日切居当罗居吉镇罗居当罗居吉拉拉巴仁巴切瓦顿巴切居下面来就用这种带做卡格南平文的区军营 哈萨拉芝麻芒木库尼人心那木就追菜安章去你追菜安章你再一把的三周最终了芝麻芒库就追菜安章对你追菜安章你再接把的那去了卡门强本你人心恰本人物别就追菜安章你追菜安章去把的这一去了恰巴塔顿别就追菜安章去送你追菜安章你再接把的 年冬去了芝麻芒不可救追菜安章去你追菜安章你再顿白了先给看白了芝麻芒不可你人心卡门强白救追菜安章你追菜安章就送白了卡住去了肉强白你人心恰巴穷白救追菜安章及你追菜安章就过白了给子了卡门强白救追菜安章列过你追菜安章就送白了不是么了 芝麻芒果尼人心卡木强白酒追菜安章妮妮追菜安章缺阿白的亲自啦卡木强白酒追菜安章列过你追菜安章几白的阿姆多啦卡瓦琼本尼人心卡木强白酒追菜安章妮妮追菜安章出白的南雄啦恰巴塔顿白酒追菜安章妮妮追菜安章缺阿白的初中啦 恰巴琼本尼人心恰巴镇翁白酒追菜安章处你追菜安章去你白的哈日啦卡木强本尼人心恰巴镇翁白酒追菜安章索你追菜安章去接白的丁钱啦肉强本尼人心恰巴琼翁白酒追菜安章按你追菜安章去周白的罗中啦肉强本尼人心恰巴琼翁白酒追菜安章对你 追菜安章去顿白的满看了恰巴塔顿白你人心肉强白酒追菜安章对你追菜安章去顿白的做工了恰巴塔顿白你人心肉强白酒追菜安章对你追菜安章去接白的再有了那么就追菜安章去给你追菜安章你脏了白的不了恰巴琼白酒追菜安章去接你 追菜安章你再接白的定地就南西里过你东为南西文的去采松